आप ही कुर्बान कर जाते, धर्म की खातर निशावर भी हो जाते, ते तन ते मन धन का माण भी नहीं करते। बस पूर्ण सिख का यो रूप है, जदों पूरा हो जाता, पर कदों पूरा होता, जदों पूरे नाल जुड़ जाता। उस मालक दे पाए हुए पूर्ण ते तुरदा, फिर अपना जीवन उहदे लेखे ला दिंदा। जे सूली ते भी चढ़ना पै जावे, फिर भी उहदे गीत गाउंदा, उहनूं भुलदा नहीं। गीत गा के

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना। ए पूर्ण सिख दी निशानी, ए पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे, आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए। तन मन धन दा मान।

भाई मंद जी राह भुल गए, जिस राह तो गए सन वो राह भुल गए। तुरिया आउंदिया एक पुराना खूह, जिस खूह दे बनेरा भी कोई नहीं। भाई मंझ जी तुरे आउंदे ने रब दे रंग विच, उस प्यारे दे गीत गाउंदिया गाउंदिया बरसात जोर दी। पर जदो भाई मंझ जी उथों दी लंघण लगे पुराना खूह, भाई मंझ जी खूह विच डिग पए। अपने आप नूं संभालिया, लकड़ां नूं बोचिया, लकड़ां किते डिग ना पए। पर एकदम खूह विच डिगे पर इधर साहब धन गुरु अर्जन देव पातशाह कीर्तन दा आनंद माणदिया एकदम संघासन तो हिले। भाई गुरदास जी नूं कहन लगे, भाई गुरदास मेरा प्यार वाला सिख भाई मंझ डिग पिए।

ये नहीं पता कि शैतान गुरु अर्जुन देव पाछा बचन कह रहे खूह च खलोतिया कह लगे ओ सिखा ते मेरे नाल प्यार है मैनू बाहर कढ़ना चाहुंदा है ते फिर कृपा कर आ गुरु दे लंगर दियां लकड़ां पहला लकड़ां नू बाहर कढ़ दे फिर मैं भी बाहर आ जावांगा किते सेवा ना व्यर्थ चली जावे इस वास्ते ते लकड़ां चुकी खलोता किते लकड़ां गिल्लियां ही ना हो जाए अज दी सेवा व्यर्थ ना हो जावे जदों भाई माध जी ने कहा ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा फिर मन भरिया कहण लगे ओ भाई गुरदास आ वेखे आ मेरे प्यार वाले सिख हन आ रूप है सिख दा जिन्हां दे हिरदे विच भावना है जिन्हां दे हिरदे विच प्यार है क्यों ना मैं ऐसे सिखां तो वारी जावां क्यों ना ऐसे सिखां तो कुर्बान जावां जेड़े मेरे तो कुर्बान हो जांदे गुरु तो अपना आप निशावर कर जांदे परवाह नहीं करदे ओ भाई मांझ ते इम्तिहान दा परचा तां पिया पर भाई मांझ इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया भावी ने से ऐसी खेल खेडी है पर हुण भाई मांझ उस इम्तिहान दे परचे विचों पास होके विखाया।

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाईआं। बड़ा आनंद है कि रोणे झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड भी है, साडा जतन भी है। लोड भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर किधरे नहीं मिलदा। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जाए। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लैना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदों रोमां विचों अमृत चढ़दा, स्वाद आउंदा। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासां विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुणदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इस शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिबंत कहिंदे ने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, यह किवें हो सकता। वो एक अवस्था है, कोई उसनू अनहद नार की गल करता, कोई उसनू इलाही नार की गल कह के करता, कोई किसी ढंग नाल दसता है, लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंदली अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त दी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा, ते शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहला आड़ी भी करदा, कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चों वल वेख के इहनां दा लिबास बड़ा वधिया, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चों के अंदर यह शौक पैदा करता जाता है, बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़िया तरक्कियां करेगा, वह चा लैके तुरदा। नहीं तो आम तौर पर बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लगे आ बहुते तां रोंदे भी वेखेगा, उन्हूं एक बार धक्के स्कूल पहुंचाना पैंदा, उत्थे जाके बहिंदा, एक तां जकड़ के बहना बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाउंदे ने उहदी समझ तो बाहर आउंदा, वो पहला पहला बड़े परेशान होंदा, पहला पहला उसनूं कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर हन बोझ जापदे, लेकिन चार दिन बाद वह जिहड़ा बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते, उन्हां अक्षर बिना नींद नहीं आउंदी, जब तक कुछ पढ़ना लवे उहदी मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धर की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है, शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापदी। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाओ, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वह बेनती की है भी स्कूल च जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, वह वरिया बत्ती पंद्रह पंद्रह भी वरे बोझ ही धोते पढ़ते भी, किताबां मत्था मारते भी, रोंदे दुखी होंदे, कई बारी वह फेल हो जाते, ते दू तू के अपने आप नूं शर्मो कशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदी, शौक नाल नहीं पढ़ते, ते फिर उनके माता पिता उनका आला दुआला कहते पढ़ता तो हैगा, पढ़ता कहदा बगार कसदा, तू कसीट के तुरै आ, वैसे पढ़ने वाली गल कोई, बिल्कुल इसे तरह साड़ी गल।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲਣਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਦਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ

कदी लोधी पठाना दा गुलाम रहा और इन्हां ने हिंदुस्तान दे लोकां ते बड़े जुलम भी कीते और हिंदुस्तान दे लोग एक गुलाम सन मुगलां दे दूसरा जातां पातां विच ऊंच नीच विच वंडे हुए सन इस करके इन्हां दे विच एका नहीं सी ब्राह्मणा दा बहना उठना वखरा शूद्रा दा बहना उठना वखरा जिस वक्त औरंगजेब दा राज हिंदुस्तान ते होया ता इसने

ओ है मानस की जात सबै एक है पहचान। पंजन अमृत छका के जाता पाता ऊंच नीच खत्म करके एक नाम देता सिंह खालसा। ते खालसे दा मतलब है खालस, जिदे विच कोई ऊंच नीच नहीं, परम नहीं, वहम नहीं, पखंड नहीं। ए खालसा नाम दिता पर नाल कुछ गल्ला भी कही। खालसा कौन है? खालसे विच की खासियत होनी चाहिए है? जे ए खालसे विच सारियां गल्ला ने ताहों खालसा है, ते ओ गल्ला गुरु साहिब जी

अगर मेरा कोई पुत्र होवे तो बिल्कुल हरी सिंह नलवे वर्गा होवे। सिंह साहब ने फिर कहा, बानो शकलों में की है, पुत्र किसे भी धर्म का होवे, किसे भी मजहब का, उसकी कहो जी भी शकल होवे, नेक होना चाहिए। बानो कहन लगी, नहीं तुहाडे वर्गा पुत्र चाहिए, तुसी मेरे नाल निकाह करा लो, व्याह करा लो। उस वेले हरी सिंह जी उठ के खड़े हो गए, गुस्से नाल अखां लाल हो गई, कहन लगे, बानो जा, चली जा, तू मैनू डेगण आई है, साडे गुरु दा हुक्म है, एका नारी जती होए पर नारी ती भैण वखान। जद ए गल कही, बानो वापस मुड़ी, पर वापस मुड़दी ने एक ताना मारे, कहन लगी, हरी सिंह मैं सुने है कि गुरु दे घरों कोई खाली कदी नहीं मुड़े, ये भी सुने है कि सिख दे घरों भी कदी कोई खाली नहीं मुड़िया, अज ये गल झूठ हो गई है, मैं सिख दे घरों खाली मुड़ चली। ताना मारे है। हरी सिंह कहन लगी, बानो ठहर जा, गुरु दा घर उथों ते कदी कोई खाली नहीं गया, गुरु दा जिहड़ा सिख है उहदे घरों भी कदी कोई खाली नहीं गया। पहरेदार सिंह नूं आवाज मारी, पहरेदार अंदर आया, हरी सिंह जी कहन लगे, जा सिखा, दूसरे तंबू विचों कीमती शौ

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए कीर्तन।

सतयुग सतगुरु वासुदेव। भाई साहब भाई गुरदास जी, गुरु घर दे वेद व्यास आप दसते हैं के वाहेगुरु अखर चार अक्षरां नाल मिलके बने। पहला अक्षर जो है वा, दूसरा अक्षर हा, तीसरा गा, चौथा रा। आप कहते हैं ये चारों अक्षर चार युगों तो लिते गए। पहला अक्षर सतयुग तो, सतयुग सतगुरु वासुदेव, वाह विष्णु नाम जपा। वाह अक्षर लिता है भगवान वासुदेव तो। हा अक्षर लिता है द्वापर दे अवतार श्री कृष्ण जी तो, हर कृष्ण हरि तो। पहला अक्षर वा तो भगवान वासुदेव, दूसरा अक्षर हरि तो, तीसरा अक्षर लिता है त्रेते दे अवतार रर्रा अक्षर राम जी तो, गग्गा अक्षर लिता है गोविंद तो। आख्या चारे अक्षरां नू मिला के वाहेगुरु दा मंत्र बने। सात संगत बोलो श्री, जो कलयुग दे समय वाहेगुरु दा जाप करेगा ओ चारे युगां दे मंत्र दा जाप दा फल दा भागी।

मुबारक के तुहाडे हाथ लगदे पए ने, पर भगवान ए कोई वड्डी गल नहीं। जे अज जमुना विच उतरे ही हो ते मेरे नाल चोज कर